नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और

ते मुंबई दे प्रसारण 9:15 प्रोग्राम आपके लिए 9:30 आज के फनकार 10 बजे शाया गीत 10:30 प्रोग्राम ढलती जाए रात ते 11 बजे करांगे आज की प्रसारण सभा समाप्त। एसी साढ़े अज ते प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा की जानकारी FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी FM बठिंडा। आओ हुन सर्वन करते हाँ प्रोग्राम अमृत वेला। सब तो पहला सरवण करांगे भाई हरजिंदर सिंह रागी अते उना दे ढाडी जत्थे पासों गायन कीता ए शब्द।

0: program Shorlia.
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 31 जुलाई, दिन शुक्रवार शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले दे तहत तुसी सुनोगे पंजाबी गायकी दा ओ नाम जिसने पंजाबी विरसे नू अपनी आवाज राही दुनिया तक पहुंचाया। जी, मनमोहन वारस।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले दे अंतर्गत मनमोहन वारस जिन्हां दे गीत अते लोक गीत जेड़े साडी मिट्टी दी खुशबू अते पंजाबी सभ्याचार नाल डूंगी तरह जुड़े होए ने।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
2: फिर तो
3: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
4: 10 लाख दियो बच जाओगे।
2: सर इन्हें कितों ले आवां?
4: एक लिंक भेजा है उन्हें प्रोसेसिंग लई
3: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
2: सर 2 लाख
5: की होया पापा?
2: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल चो ड्रग्स मिले हन। कट दिता।
5: घबराने की लोड़ नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत

0: पुलिस नू रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
1: आप पैसे गवाओगे। RBI कहता है
2: जानकार बनो सुचेत रहो।
3: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नू सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
3: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नू सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
3: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
5: कुछ जोड़ियां सिर्फ इकट्ठे तुरदियां नहीं, सगों अपनी कामयाबी अते आपसी समझ नाल होरना लई भी प्रेरणा बन जांदियां ने। ते इस बार मिलो एक अजिही खास जोड़ी नाल जिन्हां ने अपने अपने खेतरां विच मल्लां भी मारियां ने अते परिवारक जीवन विच भी एक सोहना संतुलन कायम कीता होया है। जी, मेरी मुराद है एडवोकेट लकिंदरदीप सिंह पाइका अते उन्हां दे बेटर हाफ डॉक्टर इंदरजोत कौर सिद्धू तो।

प्रोग्राम दी होस्ट रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना सिलसिला रब ने बनाईया जोड़ियां। मिति 30 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे। एक खास मुलाकात एक प्रेरणादायक सफर सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।

आओ दोस्तो उना महान शहीदां नू श्रद्धा दे फुल भेंट करिए जिन्हां ने देश दी आजादी अते सन्मान लई अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। उना दियां अमर शहादतां नू याद करन अते उना दे बलिदान नू नमन करन लई जरूर सुनियो साडी विशेष पेशकश। मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत।

बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
4: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
5: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई।

0: शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय

0: सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्ट

नमस्कार, ये आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। लोकसभा ने जनतक परीक्षावां अनुचित साधना दी रोकथाम सोध बिल 2026 पास कर दिता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरोला की आवाजी। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: यह वजी रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की थी। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सूर्य।

शांतनु मोहित्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे की रचना, आवाजें मोहित चौहान और मधुश्री की, फिल्म का नाम वेलकम।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का
0: मगर कुछ

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मीट ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजें थी। फिल्म का नाम था एक पहेली लीला। इस गीत को कुमार ने लिखा और धुन बनाई मीट ब्रदर्स अनजान ने। और धुन बनाई मीट ब्रदर्स अनजान ने।

0: गीता लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना, आवाजी अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की थी। गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और धुन प्रीतम ने बनाई थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

रेखा भारद्वाज, विशाल ददलानी और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक तक।

0: best of time. He loves it best of time.
1: कभी वो अपने मस्ती भरे अंदाज से आपको पैर थिरकाने पर मजबूर कर देते हैं।

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

सन 1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने। ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ्यूजी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रोग्राम गीत पिटारा विच तुसी सुनोगे अगला गीत जिसनू आवाजा दितिया ने सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर ने ते बोल हन ज्ञान चंद तवन दे।

प्रोग्राम विच हुन तुसी सुनोगे हंसराज हंस की आवाज़ अते बोलां विच अगला गीत जिसनू संगीतबद्ध कीता है बलदेव मस्ताना ने।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले दे अंतर्गत मनमोहन वारस जिन्हां दे गीत अते लोक गीत जेड़े साडी मिट्टी दी खुशबू अते पंजाबी सभ्याचार नाल डूंगी तरह जुड़े होए ने।

प्रोग्राम दी होस्ट रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना सिलसिला रब ने बनाईया जोड़िया। मिति 30 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे। एक खास मुलाकात एक प्रेरणादायक सफर सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।

वाली बेड़ी मेरी कदों बन लाएगा, आशा वाली बेड़ी मेरी कदों बन लाएगा, कमाचे न डूब जाने से।

माही मेरा आएगा ते वंडांगी पतासे नी, माही मेरा आएगा ते वंडांगी पतासे नी, डुल डुल पैन मेरे फुला वांगू हासे नी, डुल डुल पैन मेरे फुला वांगू।

चूड़ियां दा चा तंद तक लेत पानिया, चूड़ियां दा चा तंद तक लेत पानिया, तोल मेरी आना छेती पूनिया मकानिया, तोल मेरी आना छेती पूनिया मकानिया।

स्टूडियो घड़ी में समय 11:05 लीजिए। पेश है आकाशवाणी रेनबो FM मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। राज्यसभा में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने संबंधी विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर लगभग 6%, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर लगभग 13% और बिहार के बांकीपुर सीट पर लगभग 5% मतदान। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39 हजार परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है।

लाल सागर संकट और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब भी लापता। असम में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य जारी। केरल में कोझिकोड, वायनाड और कुन्नूर जिलों में आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर की T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। इस श्रेणी में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने रजत पदक जीता। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आज गुरुवार की सुबह मैं हूं आपके साथ रंजन। तो फिर फिल्मी सितारों की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन जगमगा रहा है और कौन खो रहा है क्योंकि वो सो रहा है, दिस एंड लोट्स मोर, इन सब पर डालेंगे नजर। ढेर सारी बातें एंड म्यूजिक, जुड़ रहे हैं आकाशवाणी के संग।

Hampton, in the magazine of

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और कार्यक्रम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। अगर आप पहली दफा जुड़े हैं तो मोस्ट वेलकम टू द फैमिली। और हमारे इस परिवार में लाखों करोड़ों श्रोता हमें दिन से लेकर रात तक 365 दिन साल के सुनते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हों, फिर रहे हों, अपने किसी भी काम के साथ समय निकाल के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में अगर मैं बॉलीवुड ट्रेल्स की बात करूं तो फिल्मी सितारों की बातें तो होती ही हैं। और ये बातें होती हैं कि वो अपने जीवन में नया पुराना क्या कर रहे हैं, किसका बर्थडे है। और आज जैसा कि हमेशा होता है, हम एक सवाल भी पूछने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और सवाल क्या है ये मैं बता देता हूँ। सवाल थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको ये वाला गीत सुनवाते हैं। तो इस सॉन्ग के बाद आएगा बॉलीवुड सरताज का सवाल। तो फिर सुनते रहिए हमारे साथ, लीजिए स्वाद आकाशवाणी रेनबो का।

0: जी हाँ, प्रेम की नैया है राम के भरोसे,
1: प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया को पार लगाई दे।
0: आपकी नैया किसके भरोसे हैं बताइए ना हमें। हमारा नंबर हैगा 9868107070, ये व्हाट्सएप का नंबर है। और हमारा जो आज का सवाल है बॉलीवुड सरताज का, जिसे सही जवाब देके आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, तो हमारा सवाल है, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म आई थी उसके अंदर सोनू सूद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उस कैरेक्टर का आपने नाम बताना है। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म, बहुत सारे सितारे थे इसमें लेकिन सोनू सूद की खास बात हो रही है, उसके पीछे भी कारण है, वजह है, बताएंगे। तो आज अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। मैं हूं रंजन आपके साथ। और हाँ, इस सवाल का जवाब दें उससे पहले मुझे बताइए, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? क्या आपने ये शब्द सुना है, ब्रह्म मुहूर्त? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है, बताइए हमें थोड़ी देर में। अगर आप चाहें तो यू कैन शेयर दैट। नंबर वही रहेगा 9868107070। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, देश की धड़कन, दिल की धड़कन, आकाशवाणी रेनबो पर।

प्रवीण चौहान का हमारे पास मैसेज आया है, खरगोन मध्य प्रदेश से, और लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:15 बजे का होता है। आपने समय लगभग सही बताया है, और रोज ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग हो सकता है, या फिर आप देश के किस कोने में रहते हैं उसका समय के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त अलग हो सकता है। अगर मैं अभी दिल्ली की बात करूं तो 11:14 पे मैंने अपने कंप्यूटर जी से पूछा कि इस समय कौन सा मुहूर्त है तो इन्होंने बताया कि चौघाड़ी

नाम का इस समय काल चल रहा है, जो वीनस से रूल्ड होता है। एक्टिव टाइम 10:45 से लेके लगभग 12:27 तक है। तो जितना ये प्रोग्राम चलेगा हम अच्छे उसमें हैं। और राहु काल दोपहर चालू होगा। अब इतनी सारी गणना है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है, आज सुबह 4:30 के करीब ट्रेलर लॉन्च हुआ है रामायण फिल्म का, जो दो पार्ट में बन रही है। 4,000 करोड़ के ऊपर इस पे रुपए खर्च किए गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर लगा मुझे भी। एंड इनफैक्ट जो म्यूजिक है, उसका बैकग्राउंड स्कोर है, उसमें यार रहमान एंड हंस जिमर का नाम रहा, तो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उसके बैकग्राउंड स्कोर में जरूर दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। और जिस तरह से हम हॉलीवुड की बड़ी ब्लॉकबस्टर और बड़े लेवल पे, बड़े मेगा बजट पे बनी फिल्में देखते हैं, उस तरह का कुछ इसके अंदर बहुत सारा ग्राफिक्स का काम है, कंप्यूटर्स से बहुत सारी चीजें इसमें बनाई गई हैं, जोड़ी गई हैं, तो देखने में एक अच्छा अनुभव रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि स्पेशली इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये बात को सोचा कि शुभ मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसको रिलीज करेंगे तो ट्रेलर को अच्छा स्वागत मिलेगा, लोग उसे अच्छे से रिसीव करेंगे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी मैं अपनी भी आपको एक बात बता सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं बताऊं, अगर नहीं चाहें तो जाने दें। खैर, अगला गाना आपके लिए आ गया है, ये थोड़ी देर में जरूर शेयर करूंगा, बट हाँ, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, देश की राजधानी दिल्ली के दिल से आप तक, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और आज हमारे इस कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि दो सोनू छाए रहेंगे। उसका कारण है कि आज बहुत मुबारक, बहुत खास दिन है। आज

सोनू निगम एज वेल एज सोनू सूद दोनों का ही जन्मदिन है। दोनों का जन्म आज की तारीख 30 जुलाई को हुआ था एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों का ईयर भी सेम ही है। तो बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ बेहतरीन आवाज, बेहतरीन कलाकार, सिंगर मिले सोनू निगम के रूप में, बल्कि सोनू सूद के रूप में एक बड़े अच्छे एक्टर, डायरेक्टर एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर मिले। हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की, क्योंकि सोनू निगम जो हैं वो बहुत सारे गाने गा चुके हैं आज तक। लगभग 6,000 से ज्यादा इन्होंने गाने गाए हैं, 32 से ज्यादा लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं। इन्हें हमारे देश से का बहुत ही सम्मानित अवार्ड यानी पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार जीता है। उसके अलावा आईफा अनगिनत अवार्ड्स जीत चुके हैं। आपको ये बहुत लंबे समय तक टीवी के ऊपर जज के रूप में भी दिखाई दिए। इन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन सोनू निगम के खुद ये शब्द हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, और हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। बट इनके जैसा लाजवाब सिंगर दूसरा अभी तक तो नहीं हुआ है। तो सोनू निगम, आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से आज के दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। A very, very happy birthday to you.

0: जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में।
1: बना है ये दिल
0: सोनू निगम का आज बर्थडे है एंड नॉट टू फॉरगेट सोनू सूद का भी जन्मदिन है। उन्हीं से जुड़ा मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, अगर उसका जवाब आप करेक्ट देते हैं तो आज हो सकता है आप बन जाएं बॉलीवुड सरताज। हमारा सवाल है, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के अंदर सोनू सूद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उस किरदार का नाम बताएं और मौका पाएं आज बॉलीवुड सरताज बनने का। और जो आज ट्रेलर रिलीज हुआ है रामायण का ब्रह्म मुहूर्त में, उसका मैजिकल इफेक्ट मैं ये बताता हूँ। कुछ लोगों से मैंने पूछा, वो बाकायदा कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है कि समय जरूर आपने बताया बट क्यों इसे महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे कल्चर के हिसाब से। इस समय आप जो भी प्रे करते हैं वो बहुत ज्यादा द होल यूनिवर्स इनफैक्ट बहुत रिसेप्टिव होता है और यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि धरती पे इस समय देव खुद उतर के आते हैं। एंड मेरा खुद एक बार ऐसा ही बड़ा प्यारा सा अनुभव हुआ था कि ये लॉकडाउन की बात है, जब घर में कुछ करने को नहीं था तो बंदा लेट नाइट सो रहा है या दिन में जल्दी उठ रहा है। तो एक दिन मैं 4:15 उठ गया और अपनी बैल्कनी में सिर्फ खड़ा था, कोई बादल नहीं थे, कोई आहट नहीं थी, अंधेरा होता है उस समय। और अचानक से मैं देखता हूं कि हवा का एक झोंका आया और ऐसी कोई वहां हवा नहीं चल रही थी। और मैंने कहा ठीक है हवा तो चल जाती है, इसमें क्या है। और थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में, एक फुहार आई बारिश की और वो बस थम गई। तो मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, जाहिर सी बात है ना पूरे दिन ना बादल थे ना बारिश का मौसम था, तो वो एक मैजिकल इंस्टेंस मेरे साथ हुआ। मैंने कहा आपसे मैं इस बात को शेयर करूं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत से फायदे हैं और आप कभी इसे अनुभव कीजिएगा और आई एम श्योर यू विल एंजॉय। आजकल की जो पीढ़ी है खैर सोती ब्रह्म मुहूर्त पे है, ऐसा मुझे पता चला है कि दिन भर और रात भर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे मसरूफ रहने के बाद जब उनकी नींद खुलती है तो वो समय जो होता है वो अलग होता है और जब वो सोने जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। इस गाने के बाद आपको बताएंगे कि कीर्ति कुल्हारी के साथ क्या हुआ है। आपने उरी में इनका रोल देखा होगा, बड़ा ही बेहतरीन काम किया था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में। इसके अलावा भी बहुत सा इन्होंने काम किया है, जैसे मिशन मंगल में भी इनका बड़ा प्यारा रोल था। ये सब बताएंगे बट आफ्टर द सॉन्ग।

0: देख, सोचिए अगर आप भारत में हैं और आपका क्रेडिट कार्ड विदेश में इस्तेमाल किया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसे आम भाषा में, सीधे सादे शब्द में आप कहेंगे कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। और ऐसा ही कुछ हुआ है कोई हाल ही में, कुछ दिन पहले, कीर्ति कुल्हारी के साथ, जो OTT पे हिंदी फिल्म सिनेमा में काफी अच्छा बेहतरीन काम कर रही हैं। और उन्हें अच्छा खासा इस पे फटका लगा। जब उन्हें बात पता चली तो उन्हें झटका लगा, क्योंकि जब वो कहीं ट्रेवल कर रही थी बॉम्बे में, और अचानक से उनके सेलफोन पे मैसेज आता है कि उनके क्रेडिट कार्ड से कुछ स्पेंड किया गया है पैसा, तो वो देख के हैरान रह गई और फिर उन्होंने बाकायदा अपने कार्ड को ब्लॉक किया। तो यहाँ पर हमें क्या सलाह आप देना चाहेंगे, जो लोग आप सुन रहे हैं, अपने कार्ड्स को आप बाकायदा, एक तो पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, OTP नहीं देना होता है, और अगर फिर भी आपकी कोई डिटेल्स किसी कारणवश आपने इंटरनेशनल लिमिट वगैरह ऑन कर रखी है, आप ट्रेवल करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो जब आप भारत वापस आते हैं तो उसे आप ब्लॉक कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आप बैठे हैं देश में और कोई और समोसे और चाय खा रहा है विदेश में आपके कार्ड पे। तो सो कृति, वी फील सो सॉरी फॉर यू, बट डोंट यू लूज हार्ट। आई एम श्योर साइबर पुलिस में आपने कंप्लेन दर्ज कर दी होगी और इसका जरूर कोई ना कोई हल निकल जाएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आपका ही मचाएगा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: पत्थर रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। ये सफर जो जारी है 90 वर्षों से अधिक, और हम आब तक पहुंचते हैं साल के 365 दिन, और लीप ईयर में जाहिर सी बात है एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो फिर आप कहाँ खोए हैं, अभी तक क्यों सोए हैं? हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो नंबर हमारा जो दिया था उस पर मैसेज करने के लिए अभी भी समय है। नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ, 9868 10 70 70, दैट्स 9868 10 70 70। यहां पर कीजिए व्हाट्सएप और हमें बताइए हैप्पी न्यू ईयर मूवी के अंदर सोनू सूद ने जो करेक्टर प्ले किया था उसका क्या नाम था, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो किसी एक को हम चुनेंगे आज और बनाएंगे बॉलीवुड सरताज जस्ट लाइक ऑलवेज। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और एक बात और है। कोई अपने देश वापस आया है, हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। वो कहाँ है इस समय ये बताएंगे, बट आफ्टर दिस सॉन्ग तो जुड़े रहें आकाशवाणी के संग।

हमारी अपनी देसी कुड़ी, देसी छोरी प्रियंका चोपड़ा इज बैक इन इंडिया एक शूटिंग के सिलसिले में अपने पति निक जोनस और अपनी बेटी माल्टी मैरी के साथ, माल्टी मैरी चोपड़ा जोनस के साथ इंडिया में इस समय है। और वो ना सिर्फ हैदराबाद में है और वहां शूटिंग कर रही है, आई थिंक फिल्म का नाम वाराणसी है। एंड उनके साथ हमारे सुपरस्टार साउथ के, उनके साथ वो महेश बाबू के साथ उन्होंने फोटो अपनी डाली है, साथ में उनके हस्बैंड भी हैं इस फोटो में। तो फिर देखना होगा कि मूवी कैसी बन रही है। और बहुत मेहनत का काम होता है शूट करना, स्पेशली आउटडोर शूट्स में। एंड वो और भी ज्यादा कई दफा ट्रबलसम हो जाता है जब आप दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे देश से फ्लाई करके आते हैं और अपना कमिटमेंट को पूरा करते हैं। फिलहाल आपको बस ये गाना अगला सुनाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर में किसी को बनाएंगे बॉलीवुड सरताज। तो बस जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत सारे सही जवाब आए हैं। इंदु अलावत कह रही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा कुछ नहीं होता है, ये आपकी सोच है, हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर फ्री टू थिंक वॉट यू थिंकिंग, बट वॉट आई फेल्ट मैंने वो बात बताई और ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, लोग मानते हैं। मैं भी नहीं मानता था, जब आपको विश्वास तब होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा घटता है। खैर, आप सुनिए अगला गाना, इंडिया वाले फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर।

0: यहाँ दुश्मन के छक्के छुड़ा दें इंडिया वाले, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, काफी पदक जीत रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, देखते हैं कौन बने हैं हमारे साथ, कौन है। हेलो।
1: हेलो सर।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते
0: जी। अपना नाम बताएं।
1: सर मैं प्रवीण कुमार चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: हाँ प्रवीण, आपकी बात सुन के, आवाज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। आज आपका दिन कैसा है? अपना नाश्ता कर बैठे हो या अभी थोड़ी देर में?
1: नहीं सर, मेरा दिन तो अभी नहीं हुआ है, अभी नाश्ता भी नहीं किया है।
0: यार अब तो 12 बजने को आए हैं। हाँ ऐसा क्यों?
1: तो
0: अरे भाई खाएगा पिएगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।
1: हाँ सर,
0: आप टाइम से ब्रेकफास्ट किए इसका, देखिए नाश्ते को अंग्रेजी में कहते ही ब्रेकफास्ट है, यानी अपने व्रत को तोड़ना।
1: हाँ सर, कल उपवास था मेरा।
0: अरे वाह, चलिए बहुत खूब। किस चीज का उपवास था कल वैसे?
1: सर गुरु पूर्णिमा।
0: हाँ तो वैसे उपवास तो कभी भी रख सकते हैं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए जी, सोनू सूद साहब ने जो किरदार प्ले किया था हैप्पी न्यू ईयर में, उसका क्या नाम था?
1: सर कैप्टन जगमोहन जगप्रकाश।
0: हाँ, और जैसे प्यार से आई थिंक मूवी में जैक्स कहते हैं, मुझे देखने
1: हाँ
0: समय हो गया है। बहुत अच्छा लगा, आज हम आपको कहते हैं जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाश्ते के साथ कुछ मीठा भी हो जाए, ताकि आपने आज आप बने हैं बॉलीवुड सरताज, आज बड़े गर्व के साथ अच्छे से घूमिएगा बाहर पूरे आत्मविश्वास के साथ।
1: ओके
0: ठीक है। और प्रवीण मैं
1: ओके
0: आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप कह रहे हैं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू और आप उसमें सफल हो।
1: ओके,
0: टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय।
0: इसी तरह से आप भी हमें सुनते रहे। अभी जाते जाते जैसे मैं आपको फोन रखने लगा, पीछे कोयल की मुझे कूक सुनाई थी, तो यानी आई कैन अंडरस्टैंड आप काफी खुले अच्छे इलाके से आपने हमें कॉल किया। बहुत से लोगों ने हमें यहाँ पर सही जवाब दिया, लेकिन देखिए क्योंकि जैसा कि रिवायत है एक ही को हम बना सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और एक साथ में धर्म भाटिया जी ने एक बात लिख के भेजी है, जवाब इन्होंने भी ठीक दिया, कह रहे हैं कि मेरी बेटी सोनिया का आज बर्थडे है, तो मैं इसीलिए उन्हें भी मुबारकबाद दूं। तो मैं आपकी बेटी सोनिया को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और विशेष देता हूं, गुड विशेष। उसका रीजन है कि हम आज ना सिर्फ दोस्त सोनू का बर्थडे मना रहे हैं, अब नाम मिलता जुलता है ना, तो मैं मना कैसे कर सकता था। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं आपके। हमें चाहिएगा
2: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं, इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

जी हाँ, कहर कुड़े, गुरु रंधावा की आवाज में गाना सुन रहे हैं धमाल फोर से। अब समय ज्यादा नहीं है क्योंकि दिस मुंडा इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द स्टूडियो और द नेक्स्ट कुड़ी इज इन द स्टूडियो। आकांक्षा मोहन आपके साथ रहेंगी विद द नेक्स्ट प्रोग्राम, आई थिंक प्ले इट कूल। यस, प्ले इट कूल रहेगा आपके साथ अगला कार्यक्रम। यहाँ पर रंजन को दीजिए इजाजत, सोनू सूद को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। इनकी बड़ा गजब के एक्टिंग रही इनके काफी अच्छा काम मुझे लगा हैप्पी न्यू ईयर के अंदर, जोधा अकबर मूवी के अंदर, आर राजकुमार, सिम्बा, यू नेम इट, एंड इज वर्क सो वेल इंटेंसिवली। इतना ज्यादा काम इन्होंने साउथ में इनिशियली किया था, उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड के अंदर ब्रेक किया। और क्या काम किया, सबसे बढ़िया काम तो दोस्त सोनू आपने पूरे देश का दिल तब जीता जब आपने सब लोगों की घर वापसी कराई थी कोरोना काल में। वी स्टिल रिमेंबर दैट, यू आर सच अ डार्लिंग, सच अ स्वीट हार्ट। आज का दिन आपको हो मुबारक, आकाशवाणी की टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सोनू सूद। रंजन कहता है ठीक है, बाय, जुड़े रहिए आकाशवाणी के संग, फिर मिलता हूँ 1 बजे के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: अपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है,

0: आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha is to take up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, will move the bill this afternoon. When the House met at 11 a.m., the Chairman, C.P. Radhakrishnan, took up 0 hour. The Chairman said he has admitted the notice received from Dr. Jitendra Singh regarding moving the bill. He said the copy of the bill has been circulated to the members so that they can move amendments. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday.
3: For moving the motion of consideration of the public examination, prevention of unfair means, Amendment Bill 2026, as passed by the Lok Sabha. Today in Rajya Sabha, by grant of waiver under Rule 123 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Council of States, that is Rajya Sabha, accordingly a supplementary list of business for today has been issued for taking up this bill for consideration and passing.
2: The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protests over the NEET exam issue. When the House met for the day at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated para-athlete Dilip Gavit for winning a gold medal and Mohammed Basil for clinching the silver medal in the men's 100-meter race at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. On behalf of the House, Mr. Birla congratulated and extended best wishes to all the players and their coaches for enhancing the nation's pride. Later, when the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over alleged police action during students' protest. Opposition MPs were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over the issue. Mr. Birla said the question hour belongs to the members and it is the most important business. The Speaker said he had appealed to all MPs both in the House and during the meeting of floor leaders not to disrupt the proceedings of the House during question hour. Mr. Birla said obstructing the proceedings of the House is not in accordance with parliamentary traditions. As the uproar continued, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. Polling is underway for by-elections in 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat.

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले दे अंतर्गत मनमोहन वारस जिन्हां दे गीत अते लोक गीत जेड़े साडी मिट्टी दी खुशबू अते पंजाबी सभ्याचार नाल डूंगी तरह जुड़े होए ने।

ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਟਸ ਰੌਕ ਐਂਡ ਡਾਂਸ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1455555 ते कॉल करो।

0: 0420-22-233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਮਮਤਾ ਅਰੋੜਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ।
3: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ
2: FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समा होया 1:09:29। ठीक 1:10 ते तुसी सुनोगे प्रदेशी खबरां आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो। खबरां लई करो कुछ पल इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति भाईचारे नाल संबंधित सफाई कर्मचारियों खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती संबंधी पंजाब के मुख्य सकत्र ते पुलिस महानिदेशक नु नोटिस जारी किए ने। कमिशन ने दोवां अधिकारियों नु 7 दिनों के अंदर अंदर इस मामले च कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने लिए है। कमिशन ने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट निर्धारित समा हद अंदर जमा न करवाने की सूरत में अधिकारियों कमिशन के सामने निजी तौर पर पेश होने लिए तलब किया जा सकता है। यह नोटिस हरदीप सिंह गिल वालों दायर की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब के आपसी भाईचारक सांझ ते सद्भावना की रवायत इसकी सब तो वड्डी ताकत है। कल रूपनगर के सरकारी कॉलेज मैदान च एक शाम भगवान शिव के नाम भजन संध्या शामिल होने लई पहुंचे सन। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक उत्साह खुशी ते भगती नाल भरे इस राजपद्री समागम च हिस्सा लेना उन्होंने बहुत माण ते संतुष्टि की गल है। इस पवित्र दिहाड़े नूं मनाउणा साडिया सभ्याचारक ते धार्मिक जड़ां प्रति साडे डूंघे सत्कार नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के नौजवानों नूं म्यारी सिक्ख्या ते हुनर दे राही समर्थ बनाउण ते केंद्रित कर रही है तां जो उह रोशन भविख दा निर्माण कर सकन। पंजाब के जल स्रोत मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने हलका फतहगढ़ साहब के पिंड सौंडा विखे नहरी सिंचाई को मजबूत करने लिए करवाई अहम विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार सूबे के किसानों वध तो वध नहरी पानी मुहैया करवा के धरती हेठले पानी की संभाल लई कदम चुक रही है। कैबिनेट मंत्री ने दसिया कि फतहगढ़ साहब हल्के प्रोजेक्टों से कुल 30 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत आई है। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले 7 महीनों दौरान सरहद पारों होने वाली नशा तस्करी संगठित अपराध ते सड़क अपराधों के खिलाफ वड्डी सफलता हासिल की है। कमिश्नरेट ने 111 किलो तो बाद हैरोइन बरामद की है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि युद्ध नशिया विरुद्ध मुहिम तहत पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी वरतों खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए नशिया नु रोकने बारे एक्ट तहत 1137 मामले दर्ज किए ने। 1898 मुलजमान गिरफ्तार किया है। कपूरथला जिले में गैर कानूनी शराब के कारोबार को रोकने लिए आबकारी विभाग ते जिला पुलिस की सांझी टीम ने बीते दिन पिंड नवा पिंड भट्ठा च छापा मार के नाजायज शराब बनाने ते सप्लाई विच शामिल एक नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। जिला आबकारी अधिकारी सुखजीत सिंह चौहल ने दसिया कि छापेमारी दौरान एक घर के कमरे के फर्श हेठों 1000 लीटर की समर्था वाला जमीन दोज टैंक जिस 270 लीटर नाजायज शराब एक पाइपलाइन सिस्टम से शराब बनाने लिए वरते जाने वाले होर उपकरण बरामद किए गए हैं। मुढ़ली जांच तो पता लगे कि मुख्य मुलजम लंबे समय तो नाजायज शराब का व्यापार करके सरकारी मालिए काफी नुकसान पहुंचा रहा है।

0: पुलिस ने सुखजीत सिंह उर्फ जीती ते अजीत सिंह खिलाफ मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी है। सौण महीने की सालाना कांवड़ यात्रा अज तो शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा दौरान वड्डी गिनती च लोग उत्तराखंड विच हरिद्वार गौमुख ते गंगोत्री वर्गे तीर्थ स्थानां ते गंगा नदी का पवित्र जल लैण लई जांदे ने। उत्तराखंड ते उत्तर प्रदेश सरकारां ने वड्डी गिनती च श्रद्धालुआं दे प्रबंधन लई व्यापक प्रबंध कीते ने। हरियाणा खुराक ते दवाइयां बारे प्रशासन ने फरीदाबाद विच नकली दवाइयां बनाउण लई वरते जाण वाले रसायणां ते एक मामले दा पर्दाफाश कीता। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब्त कीती गई खेप निर्धारित हद तों वध मिलावटी हो सकती है ते जानलेवा खतरा पैदा कर सकती है। सेहत विभाग के वधीक मुख सकत्तर डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने दस्सिया कि प्रोपीलीन ग्लाइकोल की वरतों खंघ ते सिरप अते होर दवाइयां दे निर्माण च कीती जांदी है, इसलिए इसकी गुणवत्ता ते शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ सरहंद सड़क ते बीती देर रात करीब 11 बजे पिंड पीर जैन नेड़े वापरे एक हादसे च दो व्यक्तियां दी मौके ते मौत हो गई। साढ़े पत्रकार ने दस्सिया कि हादसा उस वेले वापरिया जदों चंडीगढ़ वालों आ रहे एक ट्रक ने स्कूटर नूं टक्कर मारी, जिस कारण दोनों वाहनों नूं अग लग गई। हादसे विच स्कूटर सवार दोवें व्यक्तियां दी मौके ते मौत हो गई। मृतकां दी पछाण पिंड कोटला बछवाड़ा दे रहण वाले मनदीप सिंह ते पिंड मानूपुर दी रहण वाली पूजा वजों हुई है। घटना की सूचना मिलदियां ही पंजाब पुलिस की सड़क सुरक्षा फोर्स से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अग पर काबू पाया ते आवाजाही को सुचारू बनाया। पुलिस हादसे के कारणों की गंभीरता नाल जांच कर रही है। राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत ने पैरा एथलेटिक्स विच मर्दां दे 100 मीटर T47 फाइनल मुकाबले च सोने ते चांदी दे तमगे जीत के इतिहास रच दिता है। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुई। राष्ट्रीय खबरां का अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर 1:40 ते। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 1:15 ਤੇ 22 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਜੀ ਦਾ।

0: हेलो।
1: हेलो जी, सत श्रीकाल। हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार जी। नाम दस दो अपना।
1: जी, गुरमेल सिंह तो बोल रहा जी। धन्यवाद
0: जी, प्रोग्राम विच कॉल कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ते गीत केड़ा
1: जी।
0: सुनोगे तुसी?
1: हस्ती का फिल्म तो सुना जी, कवाली।
0: ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश ते चला रहे हैं हस्ते जख्म फिल्म दा ये गीत।
1: धन्यवाद जी।
0: जी, धन्यवाद जी।

0: हाँ, मैं सदैव सिंगल, नॉर्मल पोता जी सिंगल का फोर ब्रदर बोल रहे।
1: जी ठीक है जी, प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। गीत केड़ा सुनाओगे तुसी?
0: मंजिल फरमाई है जब शोर दी बात है जी,
1: हाँ जी
0: रम झम करे सावन सुलग सुलग जाए रे मन। धन्यवाद
1: ठीक है जी, ठीक है तुहाडी फरमाइश ते चला रहे हैं गीत, ते प्रोग्राम
0: जी, सर
1: विच तुसी कॉल कीती उहदे लई तुहाडा
0: शुक्रिया
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: धन्यवाद जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जी।
1: जी सुखदेव सिंह गिल दी फरमाइश ते चला रहे हैं ये गीत।

0: जी देख लेने हैं कि अगले श्रोता केड़े साडे नाल जुड़े ने।
1: हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैडम,
1: हाँ जी नाम दस दो अपना।
2: अपना मलोड तो राजू अरोड़ा बोल रहे हैं जी। कभी
1: जी प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ते गीत केड़ा सुनोगे तुसी?
2: कभी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दे जी।
1: जी तुहाडी फरमाइश ते चला रहे हैं कभी कभी फिल्म दा गीत ते प्रोग्राम दा हिस्सा बने तुसी, उस लई बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: शुक्रिया जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस

0: के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
3: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
5: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है।

0: कभी कहती थी कि हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपें। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
4: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बास

0: मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। FM बैंड 101.1 MHz ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2:30 ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

0: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। इस बार यानी कि मिती 2 अगस्त दिन एतवार नूं प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग मिती 31 जुलाई दिन शुक्रवार नूं दोपहर 12 बजे कीती जाएगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुहाडे वल्लों भेजे गए पैगाम अते तुहाडे नाम प्रोग्राम पैगाम च शामिल होण तां भेज देना जी अपने पैगाम साडे वट्सएप नंबर 7173 73 146 दे उत्ते 31 जुलाई दिन शुक्रवार नूं दोपहर 12 बजे तों पहलां पहलां। प्रोग्राम पैगाम दा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लो 7173 73 146। रिकॉर्डिंग दा समा 31 जुलाई दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
1: जी श्रोतियो, प्रोग्राम चल रहा है जी सुरीली दोपहर ते स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा होया है जी 2:38 ते 33 सेकंड दा। ते प्रोग्राम दे विच हुण अगला खत शामिल करन लगे हां जी मुल्लांपुर दाखा मंडी तों। लिखण वाले स्रोता ने जी बिट्टू जैन, मट्टू जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, गौतम जैन, दीपक जैन, राजा जैन, रसगुल्ला जैन, बर्गर जैन, मसम्मी जैन, नगीना जैन अते संजीव जैन। अगला खत जो मैनू मिलिया है जी मखूफ फिरोजपुर तो।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस
2: बारिश
1: तरह
2: के दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है।
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
2: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन बड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा है उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो हमें बताएं।
1: अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
2: बिल्कुल।
1: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
2: बिल्कुल
1: साझा
2: आपने
1: कीजिए।
2: किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया,
1: जी
2: तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले,
1: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत। हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
2: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत

0: पड़ता है। इसलिए हम हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपने जो अपनी अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें।
1: जी, और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वहां पर फाइन होता है
0: हाँ ये
1: तो
0: तो है।
1: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है।
0: बिल्कुल
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे, और
0: जी।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है,
0: और
1: उपयुक्त टिप्स।
0: हाँ वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कारणों से हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे।
1: जी, और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: जी
0: जो हाँ
1: पूरे
0: मित्रता
1: वर्ल्ड
0: दिवस
1: में
0: है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना,
1: जी,
0: सखा हैं,
1: हमारे
0: सखी
1: साथी,
0: हैं।
1: उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत
0: तो
1: करीबी
0: यानी ये
1: मित्र हैं।
0: हमारा दिवस है,
1: जी,
0: समझिए।
1: हम सभी का दिवस है।
0: जी बिल्कुल
1: और आप क्या करें,
0: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना।
1: सुन लेते हैं गीत।
2: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो,

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर
1: बिल्कुल,
0: बात करना बहुत जरूरी होता है ना।
1: जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं।
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल, वो दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में, ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी, और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है, अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
0: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो
1: बिल्कुल
0: फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा, है ना।
1: बिल्कुल, और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है, क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती है। ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
0: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: क्या
1: और
0: बात है।
1: हमारे एक साथी कहते हैं सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना,
0: यहाँ
1: सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
0: संबल मिलता है
1: बिल्कुल, तो
0: कि
1: हमें लगता है कि कोई है साथ में।
0: कोई है कि अरे मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता
1: बस
0: है या
1: एक ही मैं
0: चिंता
1: हूं ना
0: क्यों
1: जो
0: करती है।
1: शब्द होते हैं
0: जी,
1: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है, यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।

0: सकते हैं। एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत
1: बहुत
0: सुंदर बात
1: बहुत बहुत
0: लिखी है।
1: अच्छी बात
0: इसी
1: कही।
0: तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
1: हाँ तो एक गीत सुने।
0: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की
0: जी
1: और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो
0: जी
1: सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं,
0: जी
1: समर्पित कर देते हैं।
0: जी तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: बुधरी दाती
0: दाती। वो जी
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का

0: 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस
0: जी,
1: समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र
1: बिल्कुल
0: में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गईं।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुद्धि दादी ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुद्री ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था।
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक
1: तो
0: संदेश
1: ये,
0: सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
2: जी
3: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती झूठी नहीं है। बस
1: ऐसा
0: मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे
1: लगा
0: रूठे नहीं है। और क्योंकि
1: रूठ
0: बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा।
1: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए
0: तेज नहीं चाहिए कि एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो
1: और
0: यहाँ
1: फिर
0: से।
1: फिसलने का डर भी है ना,
0: बिल्कुल।
1: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भी गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत
0: बिल्कुल।
1: दुखदायक हो
0: और
1: जाएगी।
0: पानी भर गया अगर, और अब ऐसे ही चल दी उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो।
1: और उसमें ना हमारी चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं, और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो ये धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें। तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो
0: इसलिए
1: गई।
0: बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है ना। एक
1: बिल्कुल।
0: उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना। जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना
1: जी
0: धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं जैसे।
1: हरी हरी कोपले आ जाती है,
0: बिल्कुल।
1: और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है।
0: बिल्कुल। इतना अच्छा आंखों को लगता है ऐसा, दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो हम पे
1: बिल्कुल
0: अब।
1: हमारी
0: हाँ
1: तरह।
0: बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं, और नदियां, झरने और पहाड़ जो है

0: अपनी पूरी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती। बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
0: सच
1: है।
0: में, अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ये जो दृश्य होते हैं ना, ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो पूरी धरती पे ना,
1: बहुत सुंदर।
0: बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
1: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के
0: अंतराल
1: बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सखी सहेली,
1: सहेली।
0: और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती।
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी, ऐसी जगहों पे जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है। अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: बिल्कुल। और जो
0: इसलिए
1: जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने या तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है। तो
1: बिल्कुल।
0: भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, पर
1: बाद में
0: हमारे
1: बना लीजिए अगली बार।
0: हाँ, क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए, और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी

0: सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
1: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
0: बिल्कुल,
1: होता
0: बहुत
1: है।
0: बहुत
1: जी
0: सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मानसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति जो प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ सुना ली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई। मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या
0: बिल्कुल
1: बात है।
0: बिल्कुल, यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन

0: कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए हैं, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है। लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां, हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक
1: लिखी
0: हमारे
1: है।
0: साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई, इन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए। उसे हमें बहुत सावधानी से, उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना
0: हम
1: चाहिए।
0: क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं,
1: जी
0: तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो
1: जी
0: चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सकें, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह, ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती? एक गाना
0: एक गीत
1: सुन
0: सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं कि

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका, मैंने
0: ओहो
1: पलट कर देखा तो बोला चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचारा है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते हैं
1: सही बात
0: जो
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है, थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज. लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है, तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है. तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को.
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है।
0: इस तरीके की जब जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें. तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे.
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम इसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी इस तरह. तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
1: कई बार
0: चाहिए.
1: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं, पर जरूरी नहीं नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
0: बिल्कुल
1: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं, गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की

0: सूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है कि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
1: बिल्कुल
0: कहना ही
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
0: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है, ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि आ, आ, एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है। और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
0: और अब गीत सुन ले।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सुना ली। अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम, और डॉक्टर पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कर

0: जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है। बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था, तो चीनी लगा देती थी। जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए। हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
1: बिल्कुल,
0: जाना जरूरी है।
1: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
0: बिल्कुल,
1: सीधे
0: तुरंत ही
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर
1: के
0: के
1: पास
0: पास।
1: जाएं।
0: जी
1: और छोटी मोटी चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती है कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको
0: जी
1: काट के लगा सकते हैं।
0: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं। पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
0: और आप क्या करें,
1: ये गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।
1: आयले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान ओला सर।
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है भरोदिया बल्लभ और जिला लगता सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 25 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते?
1: सर खेती अपने यहाँ नहीं होती है, थोड़ा इनकी
0: नदी अद्दी कोई
1: नदी नहीं लगी यहाँ पे सर।
0: तलाव
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बहे थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, सर दूर पे तलाव थोड़े यहाँ से।
0: हाँ, बाकी का हाल चाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जगह के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी,
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था, सर आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए।
1: जी मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे, हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइशें आती
1: नहीं
0: हैं।
1: सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है।
1: नहीं, सर उस नाम से दतरंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी,
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या
1: हाँ
0: गतिविधियां चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रोपाई का काम जारी है। जी
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़।
1: सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़ जी।
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल पहाड़गढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है?
1: सर ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर।
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल
0: अच्छा।
1: कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप, शाम को हवा महल में तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं, लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश
1: हाँ जी हाँ
0: नसीबों में
1: जी।
0: से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिन का नाम है डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी,
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी
1: हाँ
0: के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते। फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर। मैं
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागन सा रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: गगन को डोर समझ रहा है? ना कह, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डस ले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और
1: जी
0: अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है।
1: हाँ, आज धूप भी है। हाँ
0: कश्मीर में
1: जी,
0: बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हर
1: हाँ,
0: महीने होता
1: बीच
0: है।
1: बीच में होते हैं। हाँ
0: सोनमर्ग
1: जी,
0: तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की
0: जी
1: रजला।
0: जी आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख
1: हाँ
0: जाने
1: जी,
0: के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी
1: बस
0: चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है।
1: हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता
0: जी, लेकिन वहां घूमने लायक इलाके हैं।
1: है। हाँ सर,
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, दूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहां से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज आप?
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बरसे, बिजली चमक जिया डरात बादल रे। ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से,
0: जी बोलिए
1: पृथ्वीराज
0: बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर। देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे
1: जी
0: किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
0: नवंबर से फरवरी। और दिन का कौन सा वक्त?
1: दिन का वक्त वही सर, 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12
1: जी
0: में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर, उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको
1: जी
0: सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर, यहाँ तो सबसे अच्छा दृश्य बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में।

0: भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
1: मोर, अरे वाह
0: जी जी
1: वाह, बहुत ही बढ़िया, यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
0: जी प्रकृति का संदार है सर यहाँ
1: और आपका काम क्या है भाई?
0: सर, हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
1: उस इलाके में
0: जी जी
1: तो मोटर बाइक से घूमते हैं।
0: जी जी जी
1: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
0: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना ज्ञान मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी के अंदर शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
0: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले, ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ।
1: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश।

0: इसमें क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना ज्ञान मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: कैसे हो सर?
1: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
0: हम यही शाल काम करते हैं।
1: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
0: अच्छी पश्मीने की पहचान, उसकी क्वालिटी तो अच्छी होने चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते हैं, फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
1: बहुत शुक्रिया। मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो
0: जी जी
1: टूरिस्ट वहां आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
0: टूरिस्ट यहाँ आते हैं सर, वो भी इसे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये भेजेगा तो वो सही होना चाहिए।
1: जी, और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
0: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाले छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
1: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: कुमार सानू की आवाज में फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
1: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: दिलों की नगरी जयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर,
0: बारिश
1: बादल
0: बारिश
1: है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सबसे मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या बात है,
1: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं। एक है 02-2867-0288 यानी 02-2867-0288। दूसरा टेलीफोन नंबर 02-4002-4662 यानी 02-2400-2462। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: फरमाइश।

0: सब तो पहला तां जेड़ा सोशल मीडिया है वो दसदा है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही महंगी चीज है,
1: जी
0: कि तुसी प्लास्टिक सर्जन को जाओगे तो बहुत ही खर्चा होएगा।
1: जी
0: तो मैं दसना चाहूंगी कि जी प्लास्टिक सर्जरी च कली कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं आंदी, असी रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी चीजा बनाने का काम, बर्न सर्जरी, किसी के मुंह दिया हड्डियां टूट जांदियां उन्हों दोबारा जोड़ना, किसी की उंगलां छोटियां, हाथ दिया उंगलां, पैर दिया उंगलां किसी हादसे विच कट जांदियां ने, टूट जांदियां ने, उहदी सर्जरी, ये सारियां सर्जरीज जिहड़ियां ने उह बहुत महंगीआं नहीं है, ये क्योंकि जीवन बचाण वालीआं सर्जरीज है।
1: जी
0: कॉस्मेटिक सर्जरी इस करके ही महंगी लगती है क्योंकि वह जीवन च सिर्फ सुंदरता लेके आती है, कॉन्फिडेंस लेके आती है, बट वह एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी कराओगे तो भी थोड़ी जिंदगी चलती रहती है, बट ये सर्जरीज ये ने जिहड़ियां आपां नूं कराण नाल अपना जिंदगी सुधरती है, काम लई जरूरी ने, इस करके ये सर्जरीज बाकी सर्जरीज की तरह ही इन्हां दे प्राइजेस ने। ते दूजा अजकल जिवें सरकार दीआं स्कीम्स ने या इंश्योरेंस कंपनीज ने ये भी इन्हां नूं कवर कर दीआं ने।
1: जी डॉक्टर साहब, एक होर स्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जी, आपां उन्हां दा सवाल लै लैंदे आ। इस सवाल बारे जो हुणे तुसीं जवाब दे रहे सी, इहदे बारे विस्थार सहित आपां कॉलर दी गल सुणन तों बाद डिस्कशन करते हैं। जी, स्वागत प्रोग्राम दे विच। हैलो,
2: हैलो, सत श्री अकाल भैन जी।
1: जी सत श्री अकाल बाई जी, अपना नाम दस दियो।
2: मैं बाबू सिंह बोल रहा हूं जी।
1: जी बाबू सिंह जी, डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे ने, की सवाल है जी?
2: मेरे लाल धब्बे हो जाते पहला जी, मचते बहुत, उस बाद काले हो जाते, मैं दवाई लेने 3-4 साल हो गए, जिन्ने चिर दवाई खाने उन्ने चिर तां ठीक रहना।
1: जी शरीर दे केड़े हिस्से ते हुंदे ने जी?
2: सारे पिंड ते हो जाते जी।
1: जी जी डॉक्टर साहब,
2: मचते बहुत, रात नूं कई वारी तां 3-3 बार उठ के नहाना पैंदा मैनूं।
0: हाँ जी, तुहाडे दसन अनुसार मैनू लगता है ये किसी तरह की इन्फेक्शन है, जिहड़ी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। देखो फंगल इन्फेक्शन जिहड़ी बॉडी चो है वो बहुत औखी जाती है, इहदा इलाज तुसी, तुहानू लगता है कि मैं 5 दिन दवाई खा ली हुण मैं ठीक हो गया हाँ, तो तुसी अपने आप दवाई बंद नहीं करो जब तक तुहानू डॉक्टर की एडवाइस नहीं मिलती है कि यह दवाई हुण बंद हो जानी चाहिए है। इस
2: महंगी
1: जी फिर देखो ना बाबू सिंह भाई जी, जिहड़ा हुण आपां रात नूं उठ उठ के 4 वारी नहाउंदे आ, फिर उस चीज तो खेड़ा छुट्टूगा ना
2: अपना।
1: बाबू सिंह जी, मैनू यह लगता है, चलो बिच अपनी निजी गल्लां शुरू हो गई, भी आपां नूं सही डॉक्टर कोल जाण दी लोड़ हुंदी है। सो डॉक्टर साहब तुहानूं यही समझा रहे ने भी जिहड़ी समस्या है उस समस्या नाल जो डॉक्टर साहब हल करदे ने उहनां कोल जाओ। बेनती बार बार इस मंच तों साडे सारे स्रोतियां नूं यह है भी कई बार असीं यह देख लैने भी नेड़े डॉक्टर कौन है, तुसीं उह ना देखो जी, अपनी बीमारी का डॉक्टर नहीं हुंदा जी। सो इस करके बेनती बाबू सिंह जी तुहानू भी और बाकी सारे स्रोतियां नू भी यही है, तुसी प्रोग्राम च शामिल होए तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। तुसी ये कर सकते हो कि तुसी जो माहिर डॉक्टर ने जो चमड़ी नाल संबंधित, जिस तरह डॉक्टर साहब ने तुहानू दस्सिया कि समस्या लगती है, तो तुसी अपने नेड़े दे किसी सरकारी हस्पताल दे विच भी चैकअप अपना करवा सकते हो। तो डॉक्टर साहब हुण आपां जिवें गल सोशल मीडिया की कर रहे सी, तां मिथ्स या जो धारनावां ने की कोई होर धारनावां भी है या लोक तुहाडे कोल कोई नवीं जिहियां गल्लां लैके आउंदे होण ते फिर तुहानू लगे भी आ केड़ी नवी जी गल करती, क्योंकि एक होर भी चीज है जी, सोशल मीडिया कह लिए, गूगल कह लिए, उस तो बहुत लोग अपना डायग्नोस बना के भी तुहाडे कोल पहुंचदे होणगे जी कि मैनूं आ समस्या है या ए है। इस सवाल का जवाब मैं तुहाडे तो लवांगी, एक स्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े जी, आपां पहलां उहनां दा सवाल लै लईए। हैलो जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दिओ।
3: नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार भाई जी, कौन बोलदे हो?
3: सुखविंदर सिंह जी।
1: जी सुखविंदर भाई जी, डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे ने, की सवाल है जी?
3: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
1: ਜੀ,
0: ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਮਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੜੀ ਪਰਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਿਆ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਡਰਮਲ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇਜਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੀਮਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸਥੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲਿੰਗ PRPs ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ।
1: ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਗੂਗਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ?
0: ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। इस बार यानी कि मिति 2 अगस्त दिन एतवार नूं प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार नूं दोपहर 12 बजे कीती जावेगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुहाडे वल्लों भेजे गए पैगाम अते तुहाडे नाम प्रोग्राम पैगाम च शामिल होण तां भेज देना जी अपने पैगाम साडे वट्सएप नंबर 77173-73146 दे उत्ते 31 जुलाई दिन शुक्रवार नूं दोपहर 12 बजे तों पहलां पहलां। प्रोग्राम पैगाम दा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लो 77173-73146। रिकॉर्डिंग दा समा 31 जुलाई दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे।

0: लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो फॉर वी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। इस बार यानी कि मिति 2 अगस्त दिन एतवार नू प्रसारित किते जाने वाले प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार नू दोपहर 12 बजे कीती जावेगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुहाडे वल्लों भेजे गए पैगाम अते तुहाडे नाम प्रोग्राम पैगाम च शामिल होण तां भेज देना जी अपने पैगाम साडे व्हाट्सएप नंबर 7173-73146 दे उत्ते 31 जुलाई दिन शुक्रवार नू दोपहर 12 बजे तों पहलां पहलां। प्रोग्राम पैगाम दा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लो 7173-73146। रिकॉर्डिंग दा समा 31 जुलाई दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नू सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो फॉर वी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा। FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते।
4: जी स्रोतियों, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सवानी दा ते प्रोग्राम शाम सवानी इसे तरह जारी रहेगा। स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा है 7:29:12। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸਵਾਨੀ 7:40 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रोग्राम पिंडा आले दे अंतर्गत मनमोहन वारस जिन्हां दे गीत अते लोक गीत जेड़े साडी मिट्टी दी खुशबू अते पंजाबी सभ्याचार नाल डूंगी तरह जुड़े होए ने।

आओ दोस्तो उना महान शहीदां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करिए जिन्हां ने देश दी आजादी अते सन्मान लई अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। उना दियां अमर शहादतां नूं

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। इस बार यानी कि मिति 2 अगस्त दिन एतवार नूं प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार नूं दोपहर 12 बजे कीती जाएगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुहाडे वल्लों भेजे गए पैगाम अते तुहाडे नाम प्रोग्राम पैगाम च शामिल होण तां भेज देना जी अपने पैगाम साडे व्हाट्सएप नंबर 7171-73146 दे उत्ते 31 जुलाई दिन शुक्रवार नूं दोपहर 12 बजे तों पहलां पहलां। प्रोग्राम पैगाम दा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लो 7171-73146। रिकॉर्डिंग दा समा 31 जुलाई दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
3: ਜੀ ਸਰੋਤੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸਮੂਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲਾਈਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਾਈਏ। ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी एफ एम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्स ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी कड़ी ते समां है 8:40। आओ हुण सुणदे हां NCERT द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। अज तुसीं इस प्रोग्राम दी 1339वीं कड़ी सुणोगे।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
3: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
3: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
1: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
3: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल

0: सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
0: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
1: श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
0: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोता, उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
0: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओं, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही

0: महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
8: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
9: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक

0: देखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम

0: इंडिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा।
3: हाँ,
2: इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
3: आप
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
5: मेरा अच्छा, बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा।

0: सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोते हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम उमंग FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दी प्रसारण। स्टूडियो दी कड़ी ते समा हो रहे 8:31 ते आओ सुनदे हां हुण खतां अते WhatsApp सुनेहां ते आधारित प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत।
7: पंच पाणियां दे गीत।

आओ दोस्तो उना महान शहीदां नू शरदा दे फुल भेंट करिए जिन्हां ने देश दी आजादी अते सन्मान लई अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। उना दियां अमर शहादतां नू याद करन अते उना दे बलिदान नू नमन करन लई जरूर सुनियो साडी विशेष पेशकश। मिति 31 जुलाई दिन शुक्रवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत।

इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते।

0: ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ।
1: ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹੇ 8:44 ਅਤੇ 45 ਸੈਕਿੰਡ, ਅਤੇ ਠੀਕ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, ਅਤੇ 9 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
4: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
3: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
5: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और

0: पर विचार करूंगा।
1: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
2: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं मान।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
4: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
2: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
6: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों

0: और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नुआपड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू LPG उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू LPG की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ISS ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। ISS अंतरिक्ष क्षेत्र

0: निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरप, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Radha Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Radha Sabha, the discussion is underway on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more from a correspondent.
2: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha today approved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill yesterday. After approving the legislation, the lower house was adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Rajya Sabha is discussing the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, which was cleared by the Lok Sabha yesterday. The Lok Sabha today faced adjournment as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this disruption, question hour and zero hour in the lower house could not be taken up. In Rajya Sabha, both question hour and zero hour went on smoothly. With Suparna Saikia, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CSS, to review the situation in the context of the ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आप तो ऐसे न थे फिल्म का गाना। गीत निदा फाजली का है, संगीत उषा खन्ना का।

0: गैम्बलर फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को, गीत नीरज का है, संगीत एसटी बर्मन का।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए कर्तव्य फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीत कफील आजर का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक, तक, तक।

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

0: जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी,

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

प्यार का। सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अन्नू मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

सन 1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

इसके बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

0: सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
1: सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ्यूज।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाए गीत के सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। जान आती है तेरे आने से, डूबता जी है तेरे जाने से, आपके आने से एक फजा बनती है, हम सांस भी ले तो खुशबू बनती है, कोई कुछ भी कहे आपके आने से ही सुहानी शाम बनती है।

0: Approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
2: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport gram sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
0: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which is the question is raised by the particular group. Yes.
1: Third supplementary, Sriman Dr. Ashok Kumar Mittal ji.
3: Environment तथा biodiversity के management में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे.
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी.
5: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम

0: संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है। ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
2: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
0: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को, देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी assessment has been made on how the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट

0: एसईएसआईसी के लाभार्थी नहीं थे, ईपीएफओ में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ईएसआईसी के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019-20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है, गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: स्वच्छ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
0: ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर

0: में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हांसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हांसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको कि कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करी।
1: राव, क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, 3 क्लासिफिकेशंस दी है A, B and C। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूरा खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। इस

0: अरे व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है, और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसने सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once और 3 year once और 2 year once रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में 2 बार VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो ऑन स्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे उड़ीसा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे

0: बन रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124
3: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आनंद मिश्रा,
3: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
2: टल पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी
1: है।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके काफी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
6: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कई षड्यंत्र से हमें, हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है इसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान

0: जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का या उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा।
1: शुक्रिया।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा दल आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: हेड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
3: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहोगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल

0: हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
3: मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125।
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट

डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकार रहे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है। वुमेन

0: बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बेचा फायदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहे हैं, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकड़ किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लेकिन इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके कारण है अलग अलग सर। हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं, अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए, एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए, इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के और ब्रिटिशर का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरा निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल

0: वर्क फॉर इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किए हैं सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और एनी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे है सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था। पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं। ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम दे स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
2: माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है। ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया है सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
6: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दी है। थैंक यू।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: थैंक यू सर। Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance.

0: provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction or quality of representation provided to the beneficiary?
1: Honorable Minister.
2: Dhanyavad Sabhapati ji. Mananiya Sadasya ne jo prashn kiya hai, National Legal Service Authority se sambandhit hai aur isme kitna kharcha hua aur kitne log labharthi hue, ye jawab inko de diya gaya hai. Main is scheme ke bare mein thoda batana chahta hu ki समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है. ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं. जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं. डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं. जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023-24 में हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे. ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं. इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए. धन्यवाद.
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंडिया जी.
3: थैंक यू चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषाओं में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: सभापति महोदय, माने सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं. लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है. ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानता है उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है. भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे. धन्यवाद.
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM.
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.